0: मारे गए। दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउण विचों तना नूं बाहर कढ़ो अते घरों पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तो तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वल्लों सुनेहा। हर किसी वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चलाओ।
1: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने
3: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
4: सूरज देवता
3: की मतलब?
4: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जदा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
3: मैनू नहीं पता आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
4: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
1: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
7: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
7: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
1: जेकर थानो भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au।
8: ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
7: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
8: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383-85-7048 ਤੇ। ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ ਰੇਵਨ ਹਾਲ।
9: लो जी तोड़ी नजर है पोला।
1: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
10: पोले ने कसूते बसाते
1: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2
11: पोला भाई।
12: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
12: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
13: ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 0390866655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ fireforce.com.au.
12: ਪੈਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ?
5: ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ।
11: ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ। ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433465492।
14: ਰੈਡੀ ਸੈਟ ਗੋ ਚੈਟਸਟਨ ਫੋਰਡ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਡ ਰੇਂਜਰ, ਰੇਂਜਰ ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ, ਐਵਰੇਸਟ ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮਸਟੈਂਗ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਡੈਮੋ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਓਨਡ ਵਹੀਕਲਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੀਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਟਿਮ ਫੋਰਬਸ ਜਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ। ਚੈਟਸਟਨ ਫੋਰਡ, ਰੈਡੀ ਸੈਟ ਫੋਰਡ।
15: ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ?
16: ਜਰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ।

0: आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: नजर है बोला।
2: ओए पोले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: पोले ने कसूते बसाते।
2: ओए बोले ओए टू, कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घर विच देखना ना भूलियो। ओए बोले ओए टू।
4: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
5: सूरज देवता
4: की मतलब?
5: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जदा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
4: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
5: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
6: सोना चाहिदा?
7: भरोसा चाहिदा?
6: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
8: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

अगली रचना आई ओदिना। मेरे महबूब, तैनूं भी गिला होना मुहब्बत दे, मेरे खातर तेरे अथरे जहे चावां दा की बनिया। तू रिचां दी सूई ना उकरियां सी जो रुमालां ते, उन्हां तुप्पां दा की बनिया, उन्हां छावां दा की बनिया। कवि होके किद्दां अनपढ़ी छड़ जांदा हां, तेरे नैणा दे अंदर लिखी होई इकरार दी कविता। तेरे लई राखवे होठां ते है पत्थर पत्थरा गई अड़िए बड़ी कौता। मेरी पूजा मेरा ईमान अज दोवें जख्मी ने, तेरा हासा ते अलसी दे फुल्लां दा रुमकदा हासा। मैनू जद लैके तुरे जांदे ने तेरी खुशी दे दुश्मन, बड़ा बेशर्म होके हाथ कड़ी दा टुणकदा हासा। तेरा बूहा ही है जिस थां चुक जांदा है सिर मेरा, मैं बूहे जेल दे सत वारी थुक के लंघदा हां। मेरे पिंड विच ही सत्या है कि मैं विच विच जी के जींदा, मैं अग्यों हाकमां दे सिर शेर वांगू बुक के लंघदा हां। मेरा हर दर्द एक सुई दे नक्के चो लंघदा है, लुटिया अमन सोचां दा, कतल है जशन खेतां दा, ओही बन रहे ने देख तेरे हुसन दे दुश्मन। जो अज तीकण रहे चढ़ते असाडा हुसन खेतां दा। मैं मल मल के तरेला कनक पिंडा कूचती देखी, मेरे तकण ते उस दे मुख आंदी संग नूं तकिया है। मैं वगदी आड़ ते विछदी तकी है सूरज धुप दी। मैं राती सुत्यां बिरछां नूं चुम दे तकिया है, मैं वाड़ वगदी आड़ ते विछदी तकी है धुप सूरज दी। मैं राती सुत्यां बिरछां नूं चुम दे तकिया है, मैं तकिया है तरेकां दे फुल्लां ते महक गाउंदी नूं। मैं तकिया है कपाह दे फुटां विच्चों नकसाल टकसाल ढलदी नूं। मैं चोरां वांग गिट मिट करदियां छरियां नूं तकिया है, मैं तकिया है सरों दे फुल्लां ते तिरकाल ढलदी नूं। मेरा हर चाह इन्हां फसलां दी मुक्ति नाल जुड़िया है, तेरे मुस्कान दी गाथा है हर किरसान दी गाथा। मेरी किस्मत है बस हुण बदलदे होए वक्त दी किस्मत, मेरी गाथा है बस लिशकदी होई किरपान दी गाथा। मेरा चेहरा है अज तलखी ने इन्ना खुरदरा कीता कि इस चेहरे ते पैके चांदनी नूं खुरक जही छिड़दी। मेरी जिंदगी दियां जहरां ने अज इतिहास लई अमृत इन्हां नूं पी पी मेरी कौम नूं है सुरत जही छिड़दी। मेरी जिंदगी दियां जहरां ने अज इतिहास लई अमृत इन्हां नूं पी पी मेरी कौम दी है सुरत जही छिड़दी।

आश्री दी अगली कविता है मैं पुछदा हां। मैं पुछदा हां आसमान च उड़दे सूरज नूं कि वक्त इसे दा ना है कि घटनावां कुचल दियां तुरियां जान मस्त हाथी वांग एक समुच्चे मनुख दी चेतना कि हर सवाल केवल कम च रुझे जिसम दी ही गलती होवे क्यों सुना दिता जांदा है हर वारी पुराना चुटकला क्यों कहा जांदा है असी जिउंदे हां जरा सोचो कि साडे चों किन्या कु दा नाता है जिंदगी वर्गी किसे शै दे नाल रब दी ओ केहो जई रहमत है जिथे कणक गुड दे पाटे होए हाथां ते मंडी विचले तख्त पोशां ते फैली हुई मास दी उस पिलपली ढेरी उत्ते इको समय हुंदी है आखिर क्यों बलदां दियां टल्लियां ते पानी कढ दे इंजणां दे शोर अंदर घिरे होए चेहरियां ते जम गई है एक चीख दी खामोशी कौन खा जांदा है तल के टोके ते रुग ला रहे कुतरे हुए अरमाना वाले डौलियां दियां मच्छियां क्यों गिड़गिड़ाउंदा है मेरे पिंड दा किसान एक मामूली पुलसी अगे क्यों किसे दरड़े जांदे बंदे दे चीकण नूं हर वार कविता कह दिता जांदा है मैं पुछदा हां आसमान च उड़दे होए सूरज नूं मैं पुछदा हां आसमान च उड़दे होए सूरज नूं।

अगली रचना है सब तो खतरनाक। किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। पुलिस दी कुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। गद्दारी लोभ दी मुठ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। बैठे सुत्तियां फड़े जाना बुरा तो है। डरू जही चुप विच मड़े जाना बुरा तो है, पर सब तो खतरनाक नहीं हुंदा। कपट दे शोर विच सही हुंदियां भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू दी लो विच पढ़न लग जाना बुरा तो है, सब तो खतरनाक नहीं हुंदा। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल भर जाना। ना होना तड़प दा सब सहन करी जाना। घरां तो निकलना कम ते कम तो घर जाना। सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनिया दा मर जाना। सब तो खतरनाक ओ घड़ी हुंदी है तुहाडे गुट ते चलदी हुई भी जो तुहाडी नजर दे लई खड़ी हुंदी है। सब तो खतरनाक ओ अख हुंदी है जो सब देखती हुई भी ठंडी अख हुंदी है। जिस दी नजर दुनिया नू मुहब्बत नाल चुमना भुल जांदी है। जो चीजां च उठदी अन्नी पन दी भाफ ते डुल जांदी है। जो नित दिसदे दी साधारणता नू पींदी हुई एक मंतकहीन दोहरा दे गदी केड़ विच ही रुल जांदी है। सब तो खतरनाक ओ चन्न हुंदा है जो हर कतल कांड दे बाद सुन होए वेड़ियां विच चढ़दा है। पर तुहाडियां अखां नू मिर्चां वांग नहीं लड़दा है। सब तो खतरनाक ओ गीत हुंदा है तुहाडे कन्ना तक पहुंचन लई जड़ा कीरना उलंघदा है। डरे होए लोकां दे बार मूरे जो वैली दी खंग खंगदा है। सब तो खतरनाक ओ रात हुंदी है जो पैंदी है जूंदी रूह दियां आकाशां ते। जिहदे विच सिर्फ उल्लू बोलदे गिद्दड़ हवांकदे चिपट जांदे सदी वी नेर बंद बूहियां चुगाठां दे। ते सब तो खतरनाक ओ दिशा हुंदी है जिहदे विच आत्मा दा सूरज डुब जावे ते उस दी मरी हुई धुप दी कोई छिलतर तुहाडी जिसम दे पूरब च खुब जावी। किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। पुलिस दी कुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। गद्दारी लोभ दी मुठ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। सब तो खतरनाक नहीं हुंदी।

अगली कविता है चिड़ियां दा चंबा। चिड़ियां दा चंबा उड के किते नहीं जावेगा, चिड़ियां दा चंबा उड के किते नहीं जावेगा, ऐथे किते उरे परे बन्निया ते घा खोतेगा। रुखियां मिसियां रोटियां टोया करेगा ते मैलियां चुन्नियां प्यो प्यो के लोआं नाल लुसे चेहरियां ते फेरेगा। चिड़ियां दा चंबा उड के किते नहीं जावेगा, ऐथे ही किते उरे परे लुक के कलम कल्लियां रोया करेगा। सरापे जोबना दे मरसिए गाया करेगा। चिड़ियां दे चंबे नू पोरा भी खबर ना होवेगी, अचानक कित्यों लोहे दियां चुंझां दा चाल उस जोगे आसमान ते विश जावेगा। अते लम्मी उडारी दा ओदा सुफना ओदे हर नोटियां नैणा तों पै खावेगा। चिड़ियां दा चंबा मुफ्त च ही परेशान हुंदा है, बाबल तां डोले नूं तोर के उखड़े बूहे नूं इट लावेगा, ते गुड़ियां पाड़ के पसीने नाल गले हुए कुड़ते उत्ते टाकियां समाएगा। जदों ओ आप ही गलोटिया ज्यों कत्या जावेगा, चिड़ियां दे चंबे नू मोह चरखे दा उक्का ही नहीं सताएगा। चिड़ियां दा चंबा उड के किसे भी देश नहीं जाएगा, सारी उम्र कंड चरियां दी हंडाएगा। चिड़ियां दा चंबा उड के किसे भी देश नहीं जाएगा, ते सारी उम्र कंड चरियां दी हंडाएगा।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तो पहला ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तो पहला 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवे दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
3: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
4: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
5: Big Perp. Oh yeah. Big Perp. Bubble Ride. Tenu pata ya. I'm a brown boy. Down.

0: ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ Mustang, brand new demo ਤੇ quality pre-owned vehicles, trade-in ਅਤੇ finance options ਵੀ available। ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Ford ਦਾ test drive ਕਰੋ, business fleet ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, vehicle experts Tim Forbes ਜਾਂ Corey ਨਾਲ। Radio ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ free service। Chadston Ford, ready, set।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
8: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स लई याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।
9: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
10: हां जी रेडियो।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042। ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाओ देने उनादे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थनु दिन देने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। आज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet ले गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हां जीरे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
4: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
5: देखो सच बता दो।
6: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
4: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
7: इतिहास जो सानू जदों जदों भी जख्म मिले असीं जवान।

बापू बूटा सिंह 70 साल की उम्र गली दी नुक्कर ते कम पंगा रंगना पीको सिलाई कढ़ाई का कम ते हर तरह की मशीन की भी आसानी नाल रिपेयर कर देनी। उन्होंने हाथ दे विच बड़ा हुनर सी ते दूजे पासे मेरी अपनी दुकान नवी खोली हट्टी जड़ी गली दे अंदर किन्नी जाके सी। गली दे अंदर कोई आउंदा ना ते सारी गाकी बूटा सिंह कोल चल जांदी। मैं डीकता रहिंदा गाक ना आउंदे। मैं सोचदा अक्सर कि जे इदां ही चलदा रहा तां खर्चे किदां पूरे होणगे। बापू जी अक्सर ही लंघदे ते मेरी हट्टी ते खलो जांदे सी। आख्या करदे रमेश पुत्र कम किदां चलदा तेरा कबरां वी ना हर धंदा थोड़ा टाइम मंगदा रातों रात कुछ नहीं बनदा होर भी किन्नियां नसीहतां दे देनियां होर भी किन्नियां सलावां दे जानियां ते मैं शक करी जाना कि बापू बूटा सिंह मेरा हाल पुछण नहीं आया ये सगों अंदर पईआं चीज़ां वेखण आउंदे। मैं सोचता कि जिन्ना चिर बूटा सिंह जिउंदा शायद मेरी ग्राहकी कदे नहीं वधणी फुलणी जां फिर बूटा सिंह बस देखण ही आउंदा किहदे कोल किन्ने क गाहक ने अज की करी जांदा। चलो दिन लंघदे गए। एक दिन सवेरे आके दुकान खोली तां रौला पै गया कि बापू बूटा सिंह चढ़ाई कर गया। मूँह मत्थे लगदे सां ते मैं भी अपनी अदन दुकान बंद करती। उहदे घरे पहुंचया विछी हुई दरी ते जरूरत तो वध लोग बैठे सन उहदे घरे। मैं भी जाके दरी ते बह गया। वकील ते कागज पत्र चुकी किन्ने सारे लोग मैनू अंदाजा हो गया सी कि हुण इत्थे वंड वंडाई दा रौला है। चलो अखीर अंतम संस्कार मगरों बापू बूटा सिंह दी दुकान नू ताला लग गया। मामला अदालत च पहुंच गया कि बापू बूटा सिंह की दुकान किनू मिले। इस कारण मेरी ग्राहकी जरूर वध गई। हुण असनी नहीं सी चाहिदा पर अंदरों मैं बड़ा खुश सा। रब ने मेरी सुणजू लई सी। उधर एक दिन दो बीबियां दुकान ते आईयां चुन्नियां रंगण। उन्हां दी आपस दी गलबात मेरे कन्नी पै गई। गल्लां करदियां सन कि बापू ठीक कहिंदा सी जे मैनू कुछ हो गया तां मेरे मगरों रमेश दी हट्टी ते चले जाया करियो। वो भी मेरा पोती है उस दे भी कम दे विच बड़ी सफाई है नाले नवां नवां कम है निक्के निक्के जवाग ने उसते। ये सुन के तां जिद्दां पैरां दे थले जमीन बची हुई नहीं। अपनी घटिया सोच ते बड़ी शर्म आई। सोचन लगा कि बापू दे घरे पई लड़ाई दी वजह भी शायद मैं ही सां क्योंकि बापू अपनी सारी जायदाद तां मेरे नां कर गया ते जांदा जांदा मेरे बेड़े इदां दा बूटा ला गया जिहदे फल शायद पता नहीं मेरियां किन्नियां पीढ़ियां ने खाने ने हले। इस घटना नूं काफ़ी साल हो गए ने
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦ ਪਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੇਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਭੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ, ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।

0: realforce.com.au।
1: की हो यहाँ, इन्हीं टेंशन क्यों लेती हो ये?
2: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पे NGIC, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दिया फिर ता।
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमार्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
4: देखो सच बता दो,
5: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
3: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा ताजा रहती हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने के लिए दिल हमेशा बेचैन सा रहता है। ऐसे ही चंद लम्हे और कुछ गीतों के साथ मैंने अपना बचपन, मैंने अपना जीवन गुजारा है और आज भी ये गीत मेरे दिल के करीब है, क्लोज टू माई हार्ट।

0: मिश्रा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंज
1: यानी उन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स

0: मिश्रा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी उन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच

0: मिश्रा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी उन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम

0: मिश्रा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवी डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन

0: मिश्रा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन

0: मिश्रा ज्वेलर्स की दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी उन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स

0: मिश्रा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी उन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच

0: मिश्रा ज्वेलर्स की दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी उन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स

रेडियो हांजी 1674 AM आज तारीख 11 जून 2026 और वीरवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दी खबरां लेके आए हैं। न्यूज़ बुलेटिन दी शुरुआत सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल और अमेरिका दी तरफ तो छेड़ी हुई जंग दे नाल जुड़िया हुई। खबर आंदी है कि ईरान की तरफ तो अमरीका से हमला किया गया जबकि ईरान की तरफ तो मीडिया के दसिया गया।

0: ओए पुली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
1: ओले ने कसूते बसाते
0: ओए पुली ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुलियो ओए पुली ओए 2
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वदिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल
4: लाओ जी तुहाडी नजर
0: ओला ओए पुली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
1: ओले ने कसूते बसाते
0: ओए पुली ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुलियो ओए पुली ओए 2
5: प्रॉमिस चाहिए था
6: केड़ा प्रॉमिस

0: Thank you so much. Thank you.
1: चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
2: लाओ जी थोड़ी नजर है बोला
1: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
3: बोले ने कसूते बसाते
1: ओए बोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भूलियो ओए बोले ओए टू क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: जी की हाल है पिट दर्द दा?
7: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
8: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवां स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
1: की होया, इन्नी टेंशन क्यों लेती हुई है?
9: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिम्मी पैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
9: अच्छा, असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
10: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੋਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 0390-8665 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tyreforce.com.au।
11: ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ

रेडियो हांजी 1674 AM आज तारीक 11 जून 2026 और वीरवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां लेके आए हैं। न्यूज़ बुलेटिन दी शुरुआत सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल और अमरीका दी तरफ तो छेड़ी हुई जंग दे नाल जुड़ियां हुई। पहला खबर आती है कि ईरान की तरफ तो अमरीका से हमला किया गया, जबकि ईरान की तरफ तो मीडिया के दसिया गया कि अमरीका ने हमलों की शुरुआत की है। अजय हूँ जवाब भी देना बंद है। कहा जा रहा है कि अमरीकी फौज की तरफ तो कित एयर स्ट्राइक हूँ खत्म हो चुके हैं, तो हूँ दूसरे दिन उ पैटर्न फिर तो देखने मिल रहा है जिस ईरान के द्वारा अमरीकी टिकाने निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी टिकाने अमरीका के मध्य पूर्व दे विच अमरीका दे फौजी अड्डे, हुण बहरीन दे विच अमरीकी नेवी दे पंजवें वड्डे ड्रोन बेड़े नूं ड्रोन दे नाल निशाना बनाया गया। दस दईए कि बहरीन दे विच वीरवार तड़के ही सायरन बज उठे। ईरान दे जंग प्रबंधन कर रहे खातम अल अनबिया दे हैडक्वार्टर दी तरफ तो जवाब दिता गया कि अमरीकी हवाई हमलों तो ठीक एक घंटे बाद ये हमले किए गए ने। फिलहाल खतरे की वजह के चलद हॉर्मुज स्ट्रेट तो तेल टैंकर ते मालवाहक जहाजा सने किसी भी प्रकार के बड़े बेड़िया लंघन तो रोक दिता गया। इतों गुजरन वाले किसी भी जहाज न निशाना बनाया जा सकता। इस ही IRGC ने नेवी की जी एक उन्होंने यूनिट उन्होंने तरफ तो भी चेतावनी दी गई है कि फारस की खाड़ी तो ओमान सागर के कोई भी जहाज अपने लंगर तो बहर ना क्या जाए। फारस न्यूज़ के मुताबिक IRGC की नेवी यूनिट ने भी दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के दो जहाजों जेड़े कि गलत तरीके दे नाल या फिर ईरान के तरीकों के मुताबिक नहीं से गुजर रहे उन्होंने निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोशल मीडिया से लिखा कि बड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों नू जड़े आम जिंदगी की जीवन रेखा भी होंगे ने ट्रांसपोर्ट तो लैके बिजली पानी तक निशाना बनाए जाने दी धमकियां बर्दाश्त हो नहीं होंदिया। किसी भी देश के सामने एक लिमिट होंदी है। उन्होंने अगे भी लिखा है कि ईरान ने अपने माहरां दे नाल बैठ के अपनी काबिलियत दे दम दे उत्ते किसी भी धमकी का डट के जवाब देने का हुण फैसला ले लिया है। उधर बहरीन दे गृह मंत्रालय ने अपने नागरिकां नूं सुरक्षित स्थानां दे उत्ते चले जाण दी अपील की। बहरीन दे गृह मंत्रालय दे द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दे उत्ते एक सुनेहा प्रकाशित किया गया जिस दे विच देश दी फौज दे हवाले दे नाल कहा गया कि बहरीन दे विच अमरीकी फौजी टिकाणियां दे उत्ते हमला होया। फौज दे ड्रोन हमलों दे विच अमरीका दे पंजवें वड्डे बेड़े पैट्रियट सिस्टम दे संचार एंटीना ते रडार नूं निशाना बनाया गया और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अधिकारक तौर दे उत्ते इस दी जिम्मेदारी लई लई सी। नाल ही इह वी कहा सी कि एक होर हमला जिहड़ा कुवैत च किया गया उत्थे दो अलग अलग टिकाणियां दे उत्ते हमले किए गए ने। वैसे कुल मिला के बहरीन ते कुवैत दे विच 18 टिकाणियां दे उत्ते हमले करन दा दावा ईरान ने किया है। इधर ईरानी पार्लीमेंट दे विच सुरक्षा कौमी सुरक्षा कमीशन है जिहड़ा उसके प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि असी हारन वालियां चों नहीं हैगे। उन्होंने सोशल मीडिया दे उत्ते लिखा कि ट्रंप दे दसे अंकड़ियां दे मुताबक मारे गए ईरानी जां जख्मी हुए अमरीकियां दी गिणती पहलां तो किते ज़्यादा होएगी। इस बार इस जंग दे विच एक खाड़ी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह ईरान की एक बड़ी धमकी भी कही जा सकती है। अमरीकी हमलों तो बाद ईरान की तरफ तो जिहड़े अमरीकी टिकाने ने मध्य पूर्व दे विच उन्हां नूं निशाना बना बना के विन्निया जा रहा है। बहरहाल मध्य पूर्व दे विच हालात एक बार फिर तो खराब हो गए ने। इस किस्म की टिप्पणी भी इस वक्त गुरेज नहीं होएगी कि इस गल नूं मान लिया जाए।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तों पहलां ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तों पहलां 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो,
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430 123 394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
5: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस फ्लीट लई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
6: तुहाडा प्रभाव छोटे मौकियां विच देखा जा सकता है अते जीवन बदलन वाले मौकियां विच भी। ए रोमांचक अते विहारक, संपूर्ण अते उत्साह पूर्ण हो सकता है। ए उन्ना ही निखड़वा हो सकता है जिन्ने की तुसी हो। तां तुहाडे अपने तरीके नाल हर रोज तुहाडी चिज़म दी योग्यता किसी दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदी है। अते तुहाडी वी सर्टिफिकेट तो लैके डिग्री तक इत्थे तुहाडे लई कोई ना कोई सही चिज़म योग्यता है। हुणे अर्जी देण लई चिज़म दी खोज करो। चिज़म बेहतरी लई RTO 02 60।

रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत जी। मैं गौतम कपिल एक छोटी जी रिपोर्ट तुहाडे तक लैके आए हाँ। असल दे विच बड़े सारे स्रोते पहला भी ये पुछदे रहे ने जां सोशल मीडिया ते भी ये चर्चा हुंदी रही है कि जिहड़ा दुबई बबल सी ये जिहड़ा बार बार कहा जा रहा सीगा कि दुबई जाओ शेखां दे नाल घूमो फिरो महंगीआं गड्डियां चमचमांदीआं सड़कां लहरांदे जिहड़ीआं हरियालीआं रेगिस्तान के इलाके दे विच बड़ा वधिया बनिया होया एक शहर सिर्फ दुबई नहीं दोहा जेदा ये जिहड़े मिडल ईस्ट दे या मध्य पूर्व दे विच जो भी कुछ एक दिखाई जा रही तस्वीर सी वो तस्वीर की असलियत हुण की है ते भविख दे विच उहदा भविख होएगा कि इदां ही रहेगा। इस नूं लैके एक रिपोर्ट तुहाडे तक लैके आए हैं जो हुण तक होया भविख च की होना खैर वो तो सिर्फ ट्रंप साहब नूं पता या रब नूं पता है। पर अमरीका इजराइल ते दूजे पासे ईरान सो इजराइल ने ही शुरू की एक तरीके दे नाल जंग अमरीका इजराइल बनाम ईरान जंग दे करके जिहड़ा खाड़ी देशां दे विच इनवैसटमेंट नूं लैके एक बड़ा झटका लग्या पूरी दुनिया च महंगाई का असर देखने को मिले। इहनूं सिर्फ तुसीं तेल की या एक सप्लाई चेन की अड़िकन ना समझो उसका एक विघन ना समझो बल्कि जिहड़ा दहाकियां तो एक सुनहरी सुफना दस के जिहड़ा वेचिया जा रहा मिडल ईस्ट खास करके दुबई जिदा दोहा इन्हां शहरां की चकाचौंध के उत्ते अचानक जिहड़ा खतरा हुण मंडराण लग्या तो उस सेफ हैवन का भी बलबला फटन करके हुण बहुत सारा खौफ बड़ा सारा ससोपंज बड़िया सारिया क्यासराइया बहुत सारी अनसरटैनिटी का जिहड़ा माहौल बन गया उन्हों लैके अज की यह रिपोर्ट थोड़े तक लैके आए हैं। रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते इस रिपोर्ट दे विच अलग अलग पहलुओं के बारे गल करांगे ये समझांगे कि मिडल ईस्ट दे विच इस वक्त हो की रहा है नाल ही ये भी जानांगे कि अमरीका हुण आखिरकार चाहता की है जंग के कारण जिहड़ी रुकावट आई सी जो अस्थिरता का माहौल बनिया सी उहदे नाल हुण खाड़ी देशों का अंदर जिहड़ा इनवैसट होया होया और खाड़ी देशों ने जिहड़ा बाहर इनवैसट किया है यानी कि तेल बेच बेच के ये जिहड़े अमीर तरीन देश सी मध्य पूर्व दे इन्हां दा हुण दूसरे देशों जिहड़ी इनवैसटमेंट है उहदा भी की बनेगा प्लस की हुण ट्रंप दे उत्ते यकीन है कर सकनगे या नहीं और इहदे नाल अज दी इस रिपोर्ट दे विच आस्ट्रेलियन एंगल भी जाण के चलांगे कि आस्ट्रेलियन लोग जिहड़े बार बार हुण ट्रैवल अवॉयडेंस दीआं भी जानकारियां आ रहीआं ने स्मार्ट ट्रैवल दे उत्ते हाले तक जिहड़ी है अपडेट नहीं कीती गई आस्ट्रेलिया दी तरफ तो कि ठीक है तुसीं जाओ मध्य पूर्व दे वल वो हाले आस्ट्रेलियाई लोगों नूं सलाह नहीं दित्ती जा रही और इनवैसटमेंट ड्रॉप जिहड़ा एक देखण नूं मिले आस्ट्रेलिया दा इह सारे पक्ष तुहाडे नाल अज दी इस रिपोर्ट दे विच सांझे करदे होए चलांगे। सब तो पहला जे इस रिपोर्ट दे विच तुसीं हुण एक गल समझो कि ठीक है एक गेड़ हो गया शांति दी गलबात पाकिस्तान दा धन्नवाद जिन्हां ने विचोलगी कीती शुरू करवाई सीज़फायर थोड़ा बहुत होया होया थोड़ा बहुत इस करके कह रहे हैं क्योंकि खबरां दे विच इस हफ्ते भी तुहाडे नाल एक सांझ पाई है कि ईरान वाले पासे जिहड़े ड्रोन आ रहे सी उन्हां नूं फोड़ दिता गया अमरीका ये कर रहा है या इजराइल ये कर रहा है नहीं पता पर खैर फिलहाल सीज़ फायर का या जंगबंदी का जिहड़ा पक्का फैसला हले कोई नहीं होया कोई ऐदा नहीं कि समझौता हो गया होवे कि हुण ईरान ते कोई अटैक ही नहीं होएगा तो ईरान उसनू रिटैलीएट नहीं करेगा। जे इस बार कोई समझौता हो जाता है तो कि वह हमेशा दे लई लागू रहूगा इहदी गरंटी भी कोई चुकन लई राजी नहीं ना तो ईरान ते ना ही अमरीका तो वैसे ही मध्य पूर्व नूं अपना पक्का दुश्मन मानता है जिहड़ा इजराइल वह तो कदे भी गरंटी अखर गरंटी और इजराइल कट्ठे नहीं रह सकते। साउदी अरब कतर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE वर्गे जिहड़े खाड़ी देश ये तीन चार अमीर देश तुसीं मन के चलो यो देश ने जिथे अमरीका दे अपने फौजी अड्डे बने हुए ने अमरीका जे ईरान दे उत्ते या इस तो पहला इराक दे उत्ते निगाह रखता सी तां इन्हां देशां दे विच अपने इन्हां दे नाल चंगे संबंध बना के और ये अमीर देश भी ने साउदी अरब कतर संयुक्त अरब ऐसे करके बहुत सारे दुनिया भर तो इनवैसटर इत्थे जाके इनवैसट भी करते सी पर ये खाड़ी देशों ने अमरीका तो लैके अफरीका तक दुनिया भर दे विच इनवैसट भी कर रखे जिहड़ा इत्थों पैसा आ रहा सी तेल बेच बेच के वो करोड़ां अरबां खरबां डालर का इनवैसटमेंट भी जिहड़ा हो रहे ने अमरीका तो लैके अफरीका तक दुनिया भर दे विच इनवैसट भी कर रखे जिहड़ा इत्थों पैसा आ रहा सी तेल बेच बेच के
ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ।

0: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारे। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो, व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल, रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
5: सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने।
3: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
6: 4433-280-252 ते। 4334-6542।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आडे नाल।

0: शर्त लागू।
1: हाँ जी रेडियो।
2: निशाना सही लाने वास्ते सहां ते कंट्रोल बहुत जरूरी है।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
3: हाँ जी रेडियो।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। हाँ जी हाँ।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ,

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैलै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने

ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

आप श्री मुखवागपात सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग निराशय नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभुते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगग उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेति अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग परसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदोदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पर उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानुताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पर आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालानकाल अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण गुरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज भेषय के आगा जिकर्मय के आभा

कि जगतं कृति हैं, कि छत्रं छत्री हैं, कि ब्रह्मं स्वरूपे, के अनुपव अनुपे, के आद अदेव हैं, कि आप अभेव हैं, कि चक्रं बहीन है, कि एक अधीन है, कि रोजी रजा कह रही में रहा कह, के पाक बेअब है, के गैबिल गैब है, के अफल गुना है, के साहल सुना है, के कारण कुनंद है, के रोजी दहंद है, के राज ग्रहीम है, के कर्मंग करीम है, के सर्वंग कली है, के सर्वंग दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दानी है, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पौण है, के सर्वत्र देशे, के सर्वत्र पेशे, के सर्वत्र राजे, के सर्वत्र साजे, के सर्वत्र दीने, के सर्वत्र लीने, के सर्वत्र जाओ, के सर्वत्र भाओ, के सर्वत्र देशे, के सर्वत्र पेशे, के सर्वत्र काले, के सर्वत्र पाले, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र शोक है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मानी है, सदैव प्रदानी है, के सर्वत्र जापी है, के सर्वत्र थापी है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के परमंग फहीम है, के अकाल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसन वजू है, तमाम रजू है, हमेशा सलाम है, सलीख मुदाम है, गनी बुल शिकस्ते, गरीब उल परस्ते, बुलंदर मुकाने, जमीन उल जुमाने, तमीजुल तमाम है, रजूअल निदान है, हरीफुल अजीम है, रजाय यकीन है, अनेकल तरंग है, अभेद है, अभंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरका स्वरूप है, त्रिमुक्त भूत है, प्रभगत प्रवाह है, सो जुग सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैवल कलाम है, निर्वाह स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओम आदरूप है, अनाध स्वरूप है, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिवर्गन त्रिवादे, अगजे अगाधे, सुभंग सर्वभागे, सुसर्वान रागे, त्रिपुगत स्वरूप है, अच्छे जय छूत है, कि नरकम परनाश है, पृथ्वल परवास है, निरकत परवाह है, सदैव सदा है, बेपुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, निरकत सदा है, बेपुगत परवाह है, अनुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, चातरी छंद अभंग है, अनंग है, अभेक है, अलेख है, अभर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अधूत है, अनास है, उदास है, अधंद है, अभंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, अनचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अभेक है, अडा है, अगा है, असंभ है, अभंग है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजात है, चारपड़ चंतो प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रुआल चंद तो प्रसाद, नमो नरकनासे, सदैव प्रगासे, अनंग स्वरूपे, अभंगम भूते, परमात्म परमाते, सदा सर्वसाते, अगाध स्वरूपे, निर्बाध भूते, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पोत्रे, न पुत्रे, न सत्रे, न मित्रे, न ताते, न माते, न जाते, न पाते, निसाक शरीक है, अमितो अमेक है, सदैव परवा है, अजय है, अजा है, भागवती छंद तो प्रसाद, के जाहिर जहूर है, के हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल शकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सर्वर गवन है, के हमेशल रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अधीश है, परंग परंग ईस है, समस्त अधीश है, अदेशल अलेख है, अभेशल अभेक है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुभाष है, के अजब स्वरूप है।

गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अपार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बभूते सुमस्तन स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे।

0: कौन लै पायन पूतरियो सिर कौन लै लिंग लिटलकायो कौन लिखियो हर अवाची दिशा में कहूँ पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया स्तुजो करियो रच्छा राख लियो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा। अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा सुरु सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुखद है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

पवित संगत सुभाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।

0: सन्मुख सिख कोई जीव रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले आप छड सदा रहे परने गुर बिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुरु ते वे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे पावे मुक्त ना होर थे कोई।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हर

माया अगन सभी को जई करता खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

तर सच है जिथे सदा सच तिहावे, सचो तिहावे जां तुद भावे, गुरमुख जिना बुझावे। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्से सो जन पावे, कह नानक सच सोइला।

सोरठ महल्ला नामा मान रे प्रभ की शरण विचारो जिह सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उर तारो मान रे प्रभ की शरण विचारो जिह सिमरत गनकासी उदरी

दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध,

0: गुरु जह सिमरत गणकासी उदरी ध्यान च रखियो। मेरे साहब की कहंदे ने परमात्मा दी शरण जाना ते शरण जान दे नाल जिंदगी दे ओ कदम बन आउंदे ने। आओ साहब दी रहमत प्राप्त करिए जी
1: रहाओ।
0: चूंकि जिस दे सिमरन कीतिया गणका वर्गी दा उदार हो गया गणका सी उदरी। इथे सी दे अर्थ ने गणका जैसे गणका वर्गे उधर गए ताको जस उर धारो उसका सिमरन उर कहिए हिरदे विच तारो कहिए टिकाओ। चूंकि गणका सी पापन महापुरख उस दे वाड़े जा खलोते उसका जीवन वेखिया वेख्या ते पापा नाल भरी पई है। मैं बेनती करा कोल तोता सी ओ तोता मैं बेनती करा महापुरखा कोल रहन करके राम राम जपन वाला ते गणका नु आख्या आ लै तोता तू इस नु राम राम बुलाउणा है। गुरु अर्जन देव जी का कथन है गणका उदरी हर कह तोत। मैं बेनती करा ओ तोता बोलदा उधार गणका दा हो गया गणका उदरी हर कह तोत। ओ रोज अमृत वेले उठदी है उस तोते कोल बैठ राम राम तोता भी बोलता राम राम। मैं बेनती करा एक दिन अमृत वेला होया हनेरा सी हुन तोते कोल गई हुन तोते नु कहंदी है बोल राम राम बोलता नहीं है। सोचती है नेरे च भी गल की है बोलता क्यों नहीं है। जरा क दरवाजा खोलिया होया ए सप वड़िया अंदर तोते नु खा गया ओ बैठा अंदर सप। जदो गणका ने अंदर हाथ पाया इधरों कह रही सी राम राम उधरों सप ने मारिया डंग। बस अंतकाल जो नारायण सिमरदा वाहिगुरु सिमरदा पार हो जांदा ए हकीकत है। जिंदगी भर दे पापा नाल ग्रसी होई ओ गणका दा उदार हो गया ओ वाहिगुरु दा सिमरन पापा नू कट देंदा है जी
1: रहाओ।
0: हजूर इत्थे विश्राम दे के फरमान करदे हां जी
1: अटल भयो ध्रुव जा कै सिमरन अर निरभय पद पाया।
0: अटल भयो टल तो रहत टिक गया कैम हो गया रहिंदी दुनिया तक उस ध्रुव दा नाम कैम हो गया। अटल भयो ध्रुव जा कै सिमरन राजे उतान पाद दा पुत्र है ध्रुव। सकी मां है मैं बेनती करा नाल एक मित्रेई मां है सुनीति है सकी मां। बाद विच राजा इसकी छोटी भैन नाल व्याह करदा ओ है मैं बेनती करा सुरुचि। हुण जदों एक दिन बाप दी गोद विच बैठा मित्रेई मां सुरुचि ने इस नूं बांह तों खिचिया घसीटिया चपेड़ मारी ते मुखों आखिया जे बाप दी गोद विच बैठना सी ते मेरे पेट तो जन्म लेंदो। मैं बेनती करा ए डिडो निक्का होया रोंदा रोंदा अपनी सगी मां कोल जाके कहंदा मां मैनू तू दसना तू इस बाप दी गोली है नौकरानी है के रानी है। ते मां ने आखिया सी पुत्र मैं कर्मा दी मारी गोली हां जन्म लेके मैं भावे रानी बनी है। मैं बेनती करा कि मैं बाप दी गोद विच नहीं बैठ सकदा मां मन दसना। ते मां आखिया से पुत्र जे भगती करेगा ना राम राम जपेगा ते तू बाप दी गोद विच बैठन दे लायक हो जाएगा जा सिमरन विच चला जा। कहंदे ने ध्रुव सिमरन वल तुर जांदा है घर छड़दा थोड़ा जिहा इक नेड़े ही इलाका बड़ा एकांत दा उथे जा बैठदा है। जदो जांदा है ना उस समय नारद मिलता है वो सिमरन वाल होर प्रेरणा करदा है। इधरों पुछदा भी किधर चले है जदो सारी हकीकत दा पता चलदा है आके उतान पाद बाप नू कहंदा इको एक ते पुत्र जंगल विच भेज दिता ई झिड़क के उस नू राज किस नू देवेगा। थोड़ी जी होश आई जांदा मगर बेटा चल मैं तेनू गोद च भी बिठावांगा मैं तेनू अज अद्धा रात भी देवांगा ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਪ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਸੀ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਨਿਰਭੈ ਅਵਸਥਾ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ।
1: ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਧ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ।
0: ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਲਿਆ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ? ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ੍ਰਸੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਉੱਠਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ? ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ, ਤਿਨਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ

0: 1094 अंक ते मारू दी दूजी बार आरंभ हो रही है जो कि पंचम पातशाह जी दे उचारण किते बोल ने मारू वार महला पंजवां दखने महला पंजवां ए विद्वानां दी खोज भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा वाले खोजे है भी गुरु नानक पातशाह जी का जिस अस्थान ते आगमन होया उस अस्थान नू केंद्र मन के उस तो जेड़ा दखन दा इलाका पैंदा है ओ मुल्तान साहू सिंध इलाका पैंदा है उस इलाके दी भाषा विच ए पावन दखने यानी दखनी भाषा दी ए पावन बोली जो सतगुरां ने इत्थे ज्यादातर दद्दे दी थां ते डड्डा वरत्या गया ध्यान च रखियो ते साहब जी ने ए दखने महला पंजवां विच जो पावन वार उचारण कीती है आरंभ विच हजूर सारिआं नूं इक ओंकार नाल जोड़ते ने इक ओंकार ओ तमाम ब्रह्मांड दा मूल है बड़ी वड्डी इक गल इह है अनेकां संसार दे जीव जंतु पैदा करके आप इक है अनेकां दे अंदर निवास करके आप इक है सूरज इक है करोड़ा घरे पानी दे भर के रख दिए सब अंदर प्रतिबिंब पैंदा पर सूरज इक रहिंदा है चंद्रमा इक है हब समानी जोत जो जल कटाऊ चंद्रमा कटाऊ घड़िया दे अंदर जिवे चंद्रमा देखो असि कहने ना मेरे अंदर भी जोत तेरे अंदर भी जोत हुण जोत ते सब मैं जोत जोत है सोए हुण करोड़ा जीव मनुख ही नहीं पशु पंछी कीड़े मकौड़े सब अंदर जोत है पर कमाल दी गल ए है करोड़ा अंदर जोत है पर आप करोड़ा नहीं इक है एक है अनेक है फिर एक है और इक ओंकार है जो सतगुर प्रसाद सतगुरु जी दी कृपा नाल जानिया जांदा है जी
1: तू चाओ सज्जन मंडिया डी सिस उतार
0: तू चाओ सब चवो मुखो इथे चाओ दे अर्थ ने कहो बोल ऐ मेरे सज्जन तू बोल ना कारण कवन अबोल की कारण हो गया तू बोलता नहीं है बोलना तू चाओ सज्जन मैडिया तू मैडा सज्जन है मेरा मित्र है देखो असा भरावां नाल गल कीती पति नाल पत्नी नाल बाप नाल संसार नाल दोस्तां मित्रां नाल कदी रब नाल गल करदे आ आखिए भी ऐ मेरे मालिक तू मैनू कुछ कहो ना बोलना मेरे नाल हकीकत पता की है एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई जिवें दो भरा इको कर रहन पर गलबात ना करन आपस पति पत्नी रहन इकट्ठे पर गलबात ना करन धन फिरका एक ही संग वासा अंदर मैं भी हां अंदर तू भी है जीव भी है आत्मा भी है पर असीं रहिंदे इकट्ठे हां पर गल बाहर ते सारिआं नाल करदे हां पर कदी रब नाल भी गल कर लईए मैं बेनती करा जिंदगी दा नक्शा बदल जाएगा कदी अकेले बैठ के कदी कह लेना मालिक तू बोलना तू कुछ कहो ना तू आख ते अंदरले आपे चो अजपा जाप चल पाए ते अंदर दी सुरत विच हुण वाहिगुरु बोले ओ ना समझना भी मैं बोलदा हुण वाहिगुरु आप अंदर पिया बोलदा है तू चौ सज्जन मैडिया देई सिस उतार देई इथे है जिवे अर्थ करांगे ते देई उथे देई नू डड्डा दखनी भाषा है ना ते देई सिस उतार मैं अपना सीस उतार के भेटा कर दिया तू आख ते सही ना मैनू मैं बेनती करा किस ढंग नाल रब दी नेड़ता करदे आ मेरे साहिब जी ने गल कराई है जी
1: नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार
0: महिंजे मेरे नैन तरस दे ने नैन तरसन दर्श परसन नह नींद रहन विहानियां ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲ, ਪਾਕ ਪਰਵਤ ਗਾਰ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਖਸਮ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਤੋਲ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਰੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅੱਜ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।
1: ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ,
0: ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

0: तऊ नाल मेरा हिरदा मेरा आपा मेरी सुरत तेरे नाल प्यार पाई बैठी है। मैं ए वेख लिया जे तेरे नाल प्यार होवे रब जी, जे मेरा तेरे नाल नहीं होवे ना ते मैनू फिर दूजा पासा देखदा है भी ब्याह ते दूसरा नेहो कूड़ावे देख। ए जिन्ना दुनिया दा प्यार सारा ही झूठ है, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख सो ही जग फांदियो, को काहू को नाही, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, बिपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरे। ए दुनिया दा सारा नेहो झूठ है, नानक कच्चे ने से तोड़, ए कच्चे ने ए जिओंदे ही विछड़ जांदे ने। इस करके मेरे साहब कहंदे ने मैं तकिया भी मालिक तेरे नाल प्यार पै जाए, तू एक बारी बांह फड़ लै, तू कदी बांह छड़दा नहीं, तू लोक विच भी सहारा बनदा है, तू परलोक विच भी मेरे नाल जांदा है। इस करके मेरे साहब कहंदे ने मैं तेरे नाल प्यार पाया ते बाकी सारा दुनिया दा मोह नेहो मेनू झूठा नजर आया जी।
1: कपड़ भोग डरावणे जिचर पिरी ना देख,
0: सुंदर कपड़े वधिया वधिया स्वादु पदार्थ खान वाले कपड़ भोग, मैं बेनती करा ये जिन्ने भी ने सारे डराउने ने, कदों सानू ते डराउने नहीं ना लगदे, सानू तां वधिया कपड़े मिल जान ते बड़ा चाह जिहा लगदा, सवादु पदार्थ खान नू मिल जान ते बहुत चंगे जे लगदे ने, पर जिन्ना अंदर रब दा प्यार पै गया ना, अंदर रब दा बिरहा पैदा हो गया, ओ कहंदा भी जिचर पिरी ना देख, मैं जिन्ना चिर अपने पिर मालक नू देख के ये वेख नहीं लेंदा, ओना चिर मेनू दुनिया दे आ कपड़े आ भोग पदार्थ ए सारे डराउने लगदे ने, इन्हां विच कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, एवें थोड़ी देर दे लई इन्हां पदार्थां दे नाल मन पतीजदा, हा हा करत बिहानी अवद, ता मैं संतोख ना पाया, ए सारी मनोरंजन की माया। मैं बेनती करा अज लोग मनोरंजन लभदे ने, हजूर कहंदे ने मन रंजन, रंजन दे अर्थ ने मन दी खुशी, जिस नाल मन खुश हो जाए, लोग तरह तरह दे ढंग तरीके खोजदे ने, आओ चंद पल दियां खुशियां लभिए। मेरे साहब कहंदे ने भलिया तू चंद पल दियां, तू घंटे दो चार घंटियां दियां, तू दो चार दिनां दियां खुशियां की लभदा, आ मैं तैनू सारी जिंदगी दियां खुशियां तेरी झोली विच पैंदा, सत खुशियां कीर्तन जप नाम, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, ते जे करके उस मालक दे दर्शन दीदार नहीं, ते ए कपड़े ते भोग पदार्थ ए सारे डरावने ही हां जी।
1: महला पंजवा,
0: इत्थे हजूर तीसरा श्लोक उच्चारण करदे आ, धन गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे हां जी।
1: उठी झालू कंतड़े हौ पसी तौ दीदार,
0: झालू दे अर्थ ने अमृत वेला, चा लागे उठ नाम जप, उठी झालू मैं अमृत वेले उठ बैठी, ए जिंद अमृत वेले जाग पई, किस वास्ते अपने कंत वास्ते, उठी झालू कंतड़े हां पसी तौ दीदार, मैं अंदर आपा अमृत वेले जाग के वाहिगुरु वाहिगुरु करन बैठ गया, तेरे दीद हो जान तेरे दर्शन हो जान। भाई नंद लाल जी नूं पुछिया तुसी कहंदे हो गुरु तीर्थ है ते लोग तीर्थां ते जांदे ने जाके कोई सौं खांदे ने, मैं आ छड्या तीर्थ ते आया, तुसी गुरु तीर्थ ते आके कोई सौं खादी, कहंदे हां, कहंदे की सौं खादी, कहंदे मैं सौं खादी अज तो बाद अमृत वेले दी नींद हराम कर दित्ती, बेदारी अस्त जिंदगी ये आरफाने शौक गोया हराम करदम, आज आइंदा ख्वाबे सुबह, अज तो बाद आइंदा मैं ख्वाब सुबह नहीं लेवांगा, मैं सुबह नींद दी गोद विच नहीं जावांगा, मैं सुबह गुरु दी गोद विच जावांगा। उठी चालू कंतड़े चूके अमृत वेला वत्ता का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही जमीन नु पानी लाई दे। मैं बेनती करा अजकल दी गर्मी दे मुताबक करीब एक दिन दो दिन लंघ जान ते जमीन वत्तर विच आ जांदी है ते वत्तर विच बीज बीजिए ते उगदा ना ते निरा चिक्कड़ विच बीजिए ते बीज उगदा। मैं बेनती करा ध्यान देना चिक्कड़ विच बीजिए बीज करंडिया जांदा है ते जे सुक्की विच बीजिए बीज ते अंकुर पैदा करन दी समर्थ नहीं हुंदी उहनू कहिंदे ने वत्तर। हर अमृत वेला वत्ता का ए अमृत वेला एक वत्तर है। उस समय कैनात शांत है शोर शराबा नहीं कोई दुनिया दे कारोबारी खेतर दे संबंध नहीं भलिया। उस समय सिर्फ दो ही राह ने मन मुखा नू गूढ़ी नींद दा राह है ते गुरमुखा नू अमृत वेले जाके रब दी गोद ते गुरु दी गोद दा राह है। बस उठी चालू कंतड़े हो पसी तो दीदार मैं अमृत वेले जाके तेरे नाम सिमरन विच तेरे दीदार विच चली गई जी।
1: काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस शार।
0: बाकी अखां विच कजला पाया गल विच हार पाया मुख विच पान पाया ते सारे रस इकट्ठे कीते पर मालक जे तेरा दर्शन नहीं ते सारे मेरे वास्ते सवार ने। सखी काजल हार तमोल सब किस साजिया सोलह की ये शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत ता सब किस पाईया हर हां कंत बाज शिंगार सब विरथा जाई। ओ हकीकत है ए कजले ए हार ए तमोल मालक जे तेरे दर्शन दीदार नहीं होए ए सारे मेरे वास्ते।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। चलिए आरंभ करते हैं आज के पुण्य दर्शन का, जिसमें हम अध्यात्म जगत के दर्शन करते हैं अपने कानों के माध्यम से। शास्त्र कहते हैं कि श्रवण से हृदय निर्मल होता है। जिस प्रकार स्वच्छ जल शरीर की मलिनता को दूर करता है, उसी प्रकार भगवान की कथा और नाम का श्रवण हमारे अंतःकरण की अशुद्धियों को दूर करता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में वे सदैव हमसे संवाद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें संकेत देते हैं, किंतु समस्या यह है कि हम ही उन्हें सुन नहीं पाते। कभी हम सुनना नहीं चाहते और कभी अपने अज्ञान के कारण उनके संदेश को समझ नहीं पाते। इसका मुख्य कारण है हमारे हृदय में भरी हुई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की गंदगी। जब मन इन विकारों से ढका रहता है, तब भगवान की सूक्ष्म वाणी हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाती। भगवान हमें किन किन माध्यमों से बात करते हैं, वे कौन कौन से संकेत देते हैं और हम उन संकेतों को अपने जीवन में कैसे पहचान सकते हैं, जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। मित्रों, कभी आपने ध्यान दिया है कि जीवन हमें एक ही सीख बार बार अलग अलग परिस्थितियों में सिखाने का प्रयास करता है। दर्द बदलता है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, किंतु सीख वही रहती है। आप बार बार किसी पर विश्वास करते हैं और हर बार जीवन आपको वही सबक सिखाता है। यह केवल दुर्भाग्य नहीं है, यह श्री कृष्ण का संकेत है। मानो वो कह रहे हो, बेटा अब तो समझ जाओ। जैसे एक शिक्षक जब तक वही पाठ पढ़ाता है जब तक विद्यार्थी उसे समझ ना ले, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी हमें जीवन के माध्यम से वही सीख दोहरा कर समझाते हैं। महाभारत में भी तो ऐसा ही हुआ। दुर्योधन को बार बार समझाया गया, भीष्म पितामह ने, विदुर ने, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी शांति का प्रस्ताव लेकर उसे समझाया, किंतु उसने हर बार अहंकार में आकर उस सीख को अनसुना कर दिया। परिणाम क्या हुआ? महाभारत का विनाशकारी युद्ध। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन गुरु, माता, पिता या शुभचिंतक बार बार एक ही बात समझाएं तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार उनके माध्यम से स्वयं भगवान हमसे बात कर रहे होते हैं। जब जीवन एक ही पाठ बार बार पढ़ाए तो समझिए कि कृष्ण चाहते हैं कि अब वह सीख आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आगे और भी संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं। बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, एक बात सदैव याद रखिए कि श्री कृष्ण हमेशा हमारे सामने वैसे प्रकट नहीं होते जैसे हम कल्पना करते हैं। वे हर बार बांसुरी बजाते हुए या दिव्य रूप दिखाकर हमें मार्गदर्शन नहीं देते। कई बार वे हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, जो समय समय पर हमें समझाते हैं और सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। वह मित्र हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में हमारा भला चाहता हो। उस समय शायद हमें उनकी बातें अच्छी ना लगे क्योंकि हमारा मन कुछ और चाहता है, लेकिन बाद में जब परिस्थितियां सामने आती हैं तब एहसास होता है कि वे सही कर रहे हैं। कृष्ण हमसे बात करते हैं, इसका एक और अद्भुत संकेत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं, किंतु जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब विश्वास टूट जाता है, जब मन उलझनों से भर जाता है, तब अकेलापन चारों ओर से घेर लेता है। जब असफलताएं हमारे आत्मविश्वास को हिलाने लगती है तब अचानक भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, हरि का नाम हृदय को सुकून देने लगता है। मित्रों, यह कोई संयोग नहीं है, यह केवल भावुकता नहीं है, यह वह क्षण है जब श्री कृष्ण हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे होते हैं। वे मानो कह रहे होते हैं कि तुम संसार के सहारों पर बहुत भरोसा कर चुके, अब मेरी ओर भी देखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो अब से आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडेनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस प्लेट लाई गल करो, व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल, रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
2: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
1: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: पोले ने कसूते फसाते।
1: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2
4: पोला भाई।
1: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
5: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिम्मी पैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
5: अच्छा, असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज @0433-8311 और विजिट uvfinancial.com।

0: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: सोना चाहिदा,
2: परोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
0: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तो पहला ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तो पहला 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन, जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरी जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी तां ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे परदेस विच समझाऊंगा।
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
6: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
8: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
9: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
10: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: वाह जी वाह, वाह वाह वाह वाह। सरबजीत चीमा की आवाज में आप सुने थे तेरे लकदा हुलारा रंग रा रा री री रा रा। नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हाँ कृष्ण एंड तुसी सुन रहे हो रेडियो हाँ जी 1674 AM। अज दा दिहाड़ा थानू पता है फ्राइडे दा हुंदा खुला अखाड़ा, तो उस खुले अखाड़े के अंदर मेरे ना कमेंट्री करने लिए शिरकत कर चुके ने यशप्रीत जी।
1: हाँ जी बिल्कुल, तालियां तालियां तुसी मार दो आप इतने कोई और तो है नहीं।
0: हाँ ये गलत है
1: नहीं, तालियां तो ना लेके चुटकियां सिर में समेटता
0: मैं ना माइक की फ्रीक्वेंसी का अंदाजा जा नहीं है मुड़ के उपर नीचे हो मैंने फिर सुनने को मिल जाएगा डायरेक्टर साहब।
1: तुम्हारी कमेंट्री ने ना मेनू वो याद आ गया जिवें सड राजस्थान मेलों के विच मौत का कुआं नहीं होता सी, ओदी कमेंट्री सुनी तुसी कहते बिल्कुल इदां ही बोलदे हो।
0: हां हां साडे भी इस तरह दी गल्लां बातें हुंदियां हैं। ओ कल कल रंजोत भाई नाल आपां टॉपिक एक तो टॉपिक जेड़ा भी छेड़ लो है ना तो कबड्डी आसे पासे कितने कितने आ जाती है तो ओदी कमेंट्री दी गल्लां वैसे हो सकदा हल्ला गुल्ला तो मैं क्या चलो मैं भी आज अपने रंग के साथ थोड़े से शुरू करते हैं।
1: हां जी हां जी
0: ये ऑर्केस्ट्रा वाले भी बहुत करते हैं। हां जी ओ सुनील ग्रोवर नहीं करता होता कि चडा चडा चडा ऑर्केस्ट्रा की तरफ से आ गए हैं मामा जी की तरफ से 500 रुपए
1: ओ बड़ा बढ़िया वो फोर्स भी बांधते हैं। हाँ। मामा जी दे आ गए ने फुफड़ जी दे नहीं आए
0: छोटे पार करना ही पैना आज 11 से 11 छोटा फिर इधर उधर हो फिरता है कि मैं ना रडार च ना आज
1: मैंने तो मेरे पापा से याद आ जाता एक व्याह मतलब मेरी कजन का ही व्याह उस टाइम ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਾਏ
0: ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਦਮੀ ਸੀ
1: ਵੈਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ
0: कलाकार
1: दी कदर करनी चाहिए
0: हिंदी च करनी। देखो आर्टिस्ट है जो अंग्रेजी वाला फिर भावे तुसी मिस आउट कर दो दैट्स ऑल राइट हिंदी च जरूर होनी चाहिए।
1: साडे उत्ते हिंदी बोलदे ना, मैं हुण नवी नवी पंजाबी बोलण लगी आ बाकी हिंदी चलदी है साडे उत्ते। खैर अज है शुक्रवार का दिन ते शुक्रवार का दिन जिथे हुंदा है खुला अखाड़ा तुसी भी आके अपने अंदर दे कवि अपने अंदर दे कहानीकार अपने अंदर दे पोएट जो भी तुहाडे अंदर दा उहनूं बाहर ला के इस मंच ते आके शिरकत कर सकदे हो।
0: सानूं आके साडे नाल सांझा करो, असीं कला दे भुखे हां ते तुसीं कोई पूरे हफ्ते दे अंदर वधिया जी कोई गलबात होई होवे पॉजिटिव गल होई होवे ओह भी दसो, असीं पॉजिटिव एनर्जी दे भी बहुत ज्यादा भुखे हां।
1: हां जी हां जी पॉजिटिव वाइब्स ओनली,
0: पॉजिटिव वाइब्स ओनली टुडे गाइस।
1: टॉपिक फड़िया सीगा जिथे भी मैं फड़िया क्लटर दी गल चल रही सी ते मैं किचन च काम करी मतलब मैं हर एक चीज सेंटेंस बाय सेंटेंस मैनू इदां लग रहा सी कि कोई रील कट रही है जेड़े वीडियो है ना वो मेरे थ्रू बन रहे
0: ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरा मेरे
1: मैनू इन्ना मतलब मैं कई जगह कि हर चीज ही मतलब जेड़ी किचन दी गल हुई कि हाँ तुहाडी किचन च एक्स्ट्रा समान तुसी जिथे मतलब तुसी काम फड़े हैं 3-4 जेड़े टू डू लिस्ट दे विच पूरे दिन दे जिवें फॉर एन एग्जाम्पल मैं कि मैनू सब्जी बनानी है ना डस्टिंग करनी है साफ सफाई करनी है लॉन्ड्री धुप सीगी लॉन्ड्री करनी है मैं करी जावा ओ चीजा नाल मैं कनेक्ट हो जावा मैं क्या आ कि इन्हां नूं मेरे घर दी कहानी किवें पता लग गई
0: ਲੈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਟੱਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ
1: ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ
0: ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਲਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਕਰੇਂਗੇ ਮੰਮੀ
1: ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਪਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਗੱਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
0: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਇਰਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਸ ਬੇਚਾਰੇ ਡੱਬੇ ਜਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ